0: अपना व्यक्ति सारे सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है। चक्षु गोलक स्थूल इंद्रिय का पार्ट्स है, चक्षु गोलक स्थूल इंद्रिय का फिजिकल बॉडी का वो पार्ट्स है और चक्षुर इंद्रिय वह सूक्ष्म शरीर का पार्ट्स है, अलग अलग है ये। तो जाने वाला सूक्ष्म शरीर को लेकर जाएगा, सूक्ष्म शरीर को जब लेके गया तो क्या चक्षुर इंद्रिय छोड़कर गया? फिर उस इंद्रियों को 24 घंटा पहले निकालकर दूसरे के आंख में ट्रांसपोर्ट करते हैं कि नहीं? आजकल तो मेडिकल साइंस ने तो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है, जब चक्षुर इंद्रिय उसमें नहीं थे तो वो मृत देह का आंख निकालकर किसी के आंख में लगा देने से वो देखने लगता है, तो कैसे देखने लगा? जो अंधा था उसके चक्षु गोलक नहीं थे लेकिन चक्षुर इंद्रिय वहां पहले से थे, जो मर गया है उसके चक्षुर इंद्रिय नहीं थे, चक्षु गोलक थे। तो मरे हुए का गोलक और जिंदे का चक्षुर इंद्रिय दोनों का कनेक्शन हो गया तो फिर देखने शुरू कर दिया। इसीलिए अंधे व्यक्ति के पास, हाँ, सूरदास जी के पास आंख थे कि नहीं बोलो? चक्षु थे कि नहीं सूरदास जी के? चक्षु इंद्रिय थे, चक्षु गोलक नहीं थे। हाँ, धृतराष्ट्र के पास थे कि नहीं? चक्षुर इंद्रिय था कि नहीं लेकिन चक्षु गोलक नहीं था। इस पर हम थोड़ा व्याख्या करेंगे वो आज, हाँ, क्योंकि त्रिनेत्रम पर बड़ा सुंदर विवेचनात्मक हो सकता है। यही बहुत लोग गलती करते हैं, इतनी कोई इतना भी नहीं समझ पाते हैं चक्षु गोलक अलग चीज है, चक्षु इंद्रिय अलग चीज है, चक्षु गोलक स्थूल शरीर का अंग है और चक्षु इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। चक्षु गोलक बिगड़ते हैं बनता है, चक्षुर इंद्रिय बिगड़ता नहीं है बनता नहीं है। कुलन कोठारी जो ठीक करेगा किसको ठीक करेगा? हैं? चक्षुर इंद्रिय को ठीक करेगा कि चक्षु गोलक को ठीक करेगा? गोलक को ठीक। हम लोग पहले आश्रम में रहते थे, पहले दूसरे बल्ब होते थे ना, वो तार वाला। आजकल तो सब ये सीएफएल आ गए सब है, पहले तो तार वाले बल्ब होते थे ना, पीले पीले, तो कमरे में फ्यूज हो जाता था तो अंदर से तार थोड़ा सा हट गया तो निकाल के देखा तो तार हिलता है, तो हम लोग इस तरह हिलाते हिलाते हिलाते वो तीसरे लाइन से कनेक्शन हो जाता था, जल जाता था। फिर फ्यूज हुआ हुआ भी हम ठीक कर लेते थे कई बार, वो उसमें से अलग होकर गिर गया तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो तार यदि लटक रहा है तो हम इसको हल्लाते हिलाते हिलाते हिलाते उसके तीसरे लाइन के साथ जुड़ जाता था, एक दो तीन जुड़ गया, बल्ब जलने लग गया, ठीक हो गया लेव जी है। इसी तरह कुलिन कोठारी फ्यूज हुए बल्ब को कनेक्शन ठीक कर देता है, इतने ही और कुछ नहीं करता है। चक्षुर इंद्रिय लाके नहीं देगा, हो तुम्हारे पास चक्षुर इंद्रिय पहले है और बल्ब फ्यूज हुआ है तो वो ठीक कर देगा, वो भी उस बल्ब को ठीक करेगा जो तार लटक रहे हो, और तार ही पूरा गिर गया होगा तो वो तो नहीं करेगा भाई। कितनों के आंख कहता है ना कि ये ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं होगा महाराज, जाओ वजन करो। त्रिनयनम, तो एक तो हो गया चर्म चक्षु, इसको मैं हमेशा चर्म चक्षु शब्द दिया करता हूं। आप लोग इस समय मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो ना? कौन से आंख से देख रहे हो? चर्म चक्षु से। इस समय आप लोग चर्म चक्षु से देख रहे हैं। आपके पास एक दूसरा आंख है जिसको मैं हमेशा कहा करता हूं धर्म चक्षु। कल क्या तिथि है? कल क्या तिथि है? क्या बात है, कल अमावस्या है भाई। हम लोग आप लोगों को एडवांस हैप्पी फादर डे कर देते हैं, कल फादर डे हो आज है, कल है अमावस्या के दिन है फादर डे। अमावस्या के दिन मदर डे भी होता है, अमावस्या के दिन फादर डे भी होता है। चलो जाने तो जब हो, आपको कैसे पता चला कि कल अमावस्या है और आज क्या है? 14 से कैसे पता चला? किस आंख से देखा? 14 से चतुर्थी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, सोमवार है, ये किस आंख से देखा? हाँ, एकादशी किस आंख से देखते हो तुम? चर्मचक्षु से है, चर्मचक्षु से देखो, ये चर्मचक्षु से तो एकादशी लिखा हुआ राइटिंग देखते हो, एकादशी देखते हो है? बोलो, राइटिंग तो तुम देखोगे एकादशी, वो तो तुम देखोगे इसलिए मानोगे कि एकादशी है। अच्छा, आंख जिसके चक्षु गोलक जिसके खराब हैं वो एकादशी देखेगा कि नहीं? बोलो, मुझे उत्तर दो। जिसकी आंख ठीक नहीं है, अंधा है, वो एकादशी देखेगा कि नहीं? नहीं देखेगा एकादशी। एकादशी लिखा हुआ नहीं देखेगा, लेकिन एकादशी देखेगा। कौन से आंख से देखेगा? वो धर्म चक्षु से। उसके अंदर एक और नेत्र है जो धर्म के नेत्र हैं, धर्म चक्षु है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऋचम् वाचम् प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये श्रामे प्राणम् प्रपद्ये चक्षुः।

0: शांति ही, शांति ही। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। कई दिनों से अक्टूबर महीने में भी आप लोगों ने इसी में मन किया था, जिसमें पूरा नहीं हुआ था, तो कल से तो हम लोग शिव महिमन करेंगे, परंतु आज मैं केवल सामान्य रूप से जो सत्संग की भूमिका है उसको बतलाता हूं, क्योंकि मुझे पूर्व से कोई सूचना नहीं थी कि प्रवचन आज करना है। मैं सोचा था कल से शिव महिमन पर बोलना है। जैसे ही सवा सात हुआ तो अपने मधु भाई पधारे और बोले कि प्रवचन भी करना है। कोई मैं नहा धोकर केवल आसन प्राणायाम ध्यान कर रहा था, अब ध्यान के बाद जप और पाठ करना बाकी था। इतनी भी सूचना मिली प्रवचन, हमने कहा प्रवचन भी एक समझिए कि ईश्वर की अर्चना ही है, क्योंकि योग सूत्र में भगवान पतंजलि ने कहा है ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर का प्रणिधान। प्रणिधान शब्द का अर्थ किया वहां पर कि सद ग्रंथों का चिंतन, तद जपस तदर्थ भावना इत्यादि आठ उपायों को बतलाया। आठ उपायों के बाद में सातवां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात्वा, और आठवें नंबर का सूत्र आता है यथाभिमत ध्यानाद्वा। यथाभिमत का अर्थ होता है कि आपको जो अभिमत है, स्वीकृत है, जो अनुकूल है, सहज है, आप किसी भी रास्ते से चल करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे यहां अन्य मजहब के समान डंडे के बल से यह नहीं कहा जाता है कि आप ऐसे चलोगे तो स्वर्ग नहीं तो नरक। यथाभिमत कह दिया, जैसे कि मान लीजिए कोई स्वस्थ है, मन चंचल है, जप में, समाधि में, ध्यान में, स्वाध्याय में, प्रवचन मन नहीं लगता है, तो कह दिया कि आप तीर्थाटन करो, तीर्थ यात्रा करो। यात्रा करते करते मन समाहित होगा, शांत होगा, तो भी धीरे धीरे वह जप, समाधि, स्वाध्याय, सत्संग में भी आने लगेगा। और किसी का मन बहुत समाहित है, एकाग्र है, उसके लिए केवल तत्त्वमसि इत्यादि चार महावाक्य ही पर्याप्त है, अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अधिकारी के भेद से उपासना के पद्धति में, साधना में भेद है। हमारे जीवन का प्राप्तव्य एकमेव अद्वितीय आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है सच्चित आनंद, जो सबके जीवन का प्राप्तव्य है, लक्ष्य है। सभी प्राणी अपनी सत्ता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और ज्ञान चाहते हैं। ज्ञान के पिपासु सभी हैं। एक स्वर स्वाही जीव है, स्वर स्वाही अभिरूढ़ो तथा विनिवेश। अभिनिवेश शब्द का व्याख्यान के योग दर्शन में वहां पर बतलाया कि स्वर स्वाही एक जीव है। स्वर स्वाही मतलब कि श्वास आप लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे जीव का नाम है स्वर स्वाही जीवा। मतलब स्वर के साथ पैदा हुआ, सृष्टि किया और स्वर लेने के बाद उसका मोक्ष हो गया, समाप्त हो गया। तो स्वर स्वाही जीव भी मरणत्राष्ट्र, मृत्यु से भयभीत रहता है, आतंकित रहता है। ऐसे विद्वान कोई मौत का भय होता है। अभिनिवेश शब्द का अर्थ किया मरण त्राश। जैसे एक सामान्य प्राणी को मौत से भय बना रहता है, वैसे ही विद्वान को भी मौत से हमेशा भय रहता है। और भय तब तक रहता है जब तक हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं। भय हमेशा द्वैत ज्ञान से होता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत ज्ञान से हमेशा भय बनता है। वास्तव में द्वैत नामक कोई चीज है नहीं, फिर भी हमने मन से कल्पना कर लिया। जैसे कि रात को हम लोग सोते हैं, आराम से भोजन कर लिया, एसी चला दिया, कमरे में सो गए। यहां तो एसी चलाना पड़ता है ना, हरिद्वार में तो भगवान ऐसी एसी लगा रखी है ना कि स्वेटर पहनना पड़ता है, ये बहुत काफी ठंड है। हरिद्वार से लेके मथुरा तक ठंडी है, इसके बाद तो ठंडी बिल्कुल नहीं, वहां तो पंखे चला नहीं सकते। तो आप रात को विश्राम करते सारी व्यवस्था करके, परंतु सपने में मनोदेव ने मन में जैसी वासनाएं होती हैं, जैसा संस्कार होता है, उसी संस्कारानुसार हम रात को सपना देखते हैं। सपने में भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं, कुछ लोग चिल्लाते भी हैं, बचाओ बचाओ भी आपने सुना होगा। वास्तव में आप अकेले हैं, कमरे में सो रहे मस्ती से, परंतु सोने और जगने के बीच में ये जो हमारा मनोदेव है, जो मन में वासनाएं हैं, वासनाओं के द्वारा आप ऐसी सृष्टि कर लेते हैं, उस सृष्टि से स्वयं आतंकित हो जाते हैं। लोग जगाते हैं तो जगने के बाद कहता है कि मैं तो आराम सोया हूं, कई बार भ्रम हो जाता है कि वास्तव में मैं कमरे में सोया हूं या कहीं और था। इसी प्रकार से पूरा संसार स्वप्नवत सर्वम स्पष्टम आत्मा द्वैतो सनातनः। शास्त्रकार कहते हैं यह जो संसार है स्वप्नवत स्पष्टम आत्मा अद्वैतो सनातनः। जैसे कि एक स्वप्न आया फिर गया, ऐसे ही संसार एक तरह से सपना है। बचपना में हमने बहुत कुछ आंखों से देखी, कान से सुनी, बहुत अनुभव किया। बचपना गया, जवानी आई, जवानी में भी हम लोगों ने बहुत कुछ अपने इंद्रियों से खुराफात किया। जवानी में खुराफात ज्यादा करते हैं, सभी करते हैं। जवानी भी आज इस वृद्धावस्था में सपना हो गई, और हमारे प्राय सभी श्रोता जो है ना तुरीय अवस्था के, तुरीय जानते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, और इधर तुरीय अवस्था वृद्धावस्था का भी नाम है। बाल्यावस्था, युवावस्था, इसके बाद में प्रौढ़ावस्था, और तुरीय है वृद्धावस्था। और सभी तुरीय तत्व को पाना भी चाहते हैं। तो ये जो संसार है स्वप्नवत स्पष्टम, ये वृद्धावस्था भी एक दिन जो है ना सपना, सपने के मतलब में समाप्त हो जाएगी। परंतु मनुष्य इस सच्चाई को न समझ करके अपने मन से द्वैत की सृजना करके, मकड़ी जैसे जाल बनाती है वैसे ही हमने भी जाल बना लिया, और जाल बना करके फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। वास्तव में है कुछ नहीं, मात्र प्रतीति है। जैसे दर्पण में कुछ भी नहीं होता है, परंतु दर्पण के सामने हम जैसा चेहरा लेकर जाएंगे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। पुराने जमाने की बात है, जिस समय की अभी इतना अधिक फोटोग्राफी का प्रचलन नहीं था, एक फोटोग्राफर आया और राजा से निवेदन किया, मैं बड़ा सुंदर आपकी तस्वीर बना सकता। राजा ने कहा कि तस्वीर बनाना, पर देखो हमारे जो दाढ़ी बाल है ना पके हुए हैं, जरा इसको बढ़िया से बनाना, काले काले बनाना। कहा ठीक है हजूर। इसके बाद चलते चलते मंत्री जी बोले कि देखो राजा की दाढ़ी तो तुम बढ़िया बनाओगे काले, और देखो मैं हमेशा बैठा रहता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं ना, तो मेरे पेट बहुत जरा जो है ना अच्छे नहीं है, जरा बिल्कुल लेवल में ठीक पेट को बदलाना। आगे बढ़ा तो दीवान जी मिले, बोले देखो मैं राजा का दीवान हूं, प्रमुख हूं, तो ये मेरा जो हाथ कट गया है ना, जरा हाथ को बिल्कुल ठीक ठाक बनाना, कटवा नहीं होना चाहिए। سب نے ایک ایک فرمائش کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تین مہینے کی مہلت مانگی. تین مہینے کے بعد اپنا وہ جو ہے سادہ کاغذ لے کر دربار میں پیش ہوا اور راجا کو پکڑا دیا, دوسرا کاغذ منتری کو, تیسرا دیوان جی کو, اور ایک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گھوشنا کر دیا کہ ہم نے تصویر بہت سندر بنائی ہے. تصویر کا خوب بخان کیا کہ راجا کی تصویر ایسی ہے, بہت سندر دکھ رہے ہیں, منتری جی ایسے ہیں, دیوان جی ایسے ہیں, پر ایک اس میں شرط لگا دیا, جس نے جیون میں کبھی بھی کوئی پاپ نہ کیا ہو اسی کو دکھائی پڑے گی. اب راجا دیکھ رہے, کیسے راجا صاحب کہیں تو مجھے دکھائی نہیں پڑ رہی. یعنی کہا دیا کہ دکھائی نہیں پڑی, مطلب آپ نے بڑا بھاری پاپ کیا ہے. منتری جی کو پوچھا, بولے بہت سندر دکھائی دے رہا. سب نے جو ہے ہاں کر دیا. اب بےچارا انعام لے کے چلا گیا. اکیلے میں راجا منتری دیوان تینوں بیٹھے. بولے ہی کچھ تو دکھائی نہیں پڑا. دیوان نے کہا کہ مجھے بھی دکھائی نہیں پڑا. منتری نے کہا مجھے بھی دکھائی نہیں پڑا. سب نے کہا کچھ دکھائی نہیں پڑا. یہ ہم لوگوں کو بھائی سبھا میں بےکوف بنایا ہے, پر سبھا میں کیسے کر سکتے دکھائی نہیں پڑا. کیونکہ یدی ہم نے کہہ دیا دکھائی نہیں پڑا, مطلب کہ ہم نے بڑا بھاری جیون میں پاپ کیا. کیونکہ پاپاتما کو تصویر دکھائی نہیں پڑ سکتی, شرط اس نے رکھی تھی. دوبارہ بلایا گیا. دیوار نے زور سے ڈانٹا کہ تم نے ہم سبھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کورے کاغذ میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑ رہا, پر تم نے ایسی شرط رکھ دی تھی کہ ہم نہ نہیں کر سکے. سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا دھوکہ کیوں کیا. اس فوٹوگرافر نے کہا کہ دیکھو راجن, تصویر تو ویسی بنے گی جیسا آپ کا شریر ہے, اس لیے میں تصویر نہیں بنایا کہ جیسا شریر ویسا بناؤ تو آپ خوش نہیں ہوں گے, اس لیے ہمیں ایسا شرط رکھنی پڑی. تو ویسے ہی سمجھو یہ جو سنسار ہے نا, وشوم درپن درشیما نگری تلیم, اس سنسار بڑا بھاری درپن ہے. اس درپن میں ہمارا انتہکرن جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سب دکھائی پڑتا ہے. اسی بات کو ویدانت کے درشٹی کون سے سمجھایا جاتا ہے, یتھا درشٹی تتھا سرشٹی. جیسی ہمارے درشٹی ہوتی ہے ویسے ہی اس سرشٹی, اس سنسار دکھائی پڑتا ہے. من میں یدی آپ کے کامنا ہے, لوبھ ہے, تو آپ ہردوار بھی جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہی دکھائی پڑے گا کہ کہاں پر بڑھیاں ہوٹل کھولیں گے تو اچھی کمائی ہوگی. ایک لڑکا گجرات سے آیا تھا میرے پاس, جوشی پریوار کا, تو میں کہیں باہر گیا تھا تو رک گیا. اس نے آتے مجھے کہا کہ مہاراج جی, یدی جہاں گنگا اسنان کرتے وہاں ہوٹل کھول دیا جائے تو بہت چلے گا. ہم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ بولا کہ یہ اتنی بسیں آتی ہیں پر کوئی ویوستھا نہیں ہے, لوگ پریشان ہو کے دور جاتے بھوجن کرنے. تو دیکھو ویاپاری کا بیٹا, اس کو وہاں پر بھی وہی دکھائی پڑ. اس نے یہاں نہیں کہا کہ بڑی سندر گنگا جی ہے یا برکش ہے یا سنت بیٹھ کے بھجن کر رہے, کچھ نہیں دکھائی پڑا. اس کو یہی دکھائی پڑا کہ یہاں پر یدی ایک سندر ہوٹل کھول دیا جائے تو بہت جو ہے آواک ہوگا, دھن اپلبدھ ہوگا. تو من میں یدی دھن کی کامنا ہے تو آپ بدری وشال جائیں, ہردوار جائیں, وہیں دکھائی پڑے گا کہاں سے کیسے کتنا دھن کمایا جاتا ہے. من میں موہ ہے تو وہاں بھی موہاکار وتی کے لیے درشیہ مل جائیں گے. تو ہمارے انتہکرن میں جیسے سنسکار ہوتے ہیں, جیسی ہمارے درشٹی ہوتی ہے, بھاونائیں ہوتی ہے, ویسا ہی سنسار کے نظارہ دکھائی پڑتا ہے. اسی بات یوگ درشن میں واچسپتی مشر نے جو بھامتی پرستھان کے آوشکرتا ہیں کہتے ہیں, وستو سامے پی چت بھیداتا تیور وکتہ پنتھا. एक ही वस्तु है, पर हमारे चित्त के वृत्तियों के अलग अलग होने से उस वस्तु में अलग अलग फल उपलब्ध होते हैं। इसके व्याख्यान में एक दृष्टांत वहां पर दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बहन को दुर्भाग्य से बीमार हो गई हो, स्कूटर पर बैठाकर दवाई कराने के लिए कहीं ले जा रहा हो, तो रास्ते में जितने प्राणी उसको देखेंगे उतनी अलग अलग वृत्तियां बनती हैं। यदि रास्ते में उस बहन का बेटा देखेगा तो वात्सल्य भाव होगा, मेरी मां जा रही है। सौत देखेगी तो क्या भावना होगी, बस भगवान वहीं से उधर ऊपर उठा ले जाए। और यदि कोई कामक पुरुष देखेगा तो मन में कामना होगी, स्खलन होगा, विक्षेप होगा। और कोई यदि व्याघ्र देखता हो जंगल से छिप करके तो उसको भोजन दिखाई पड़ेगा। और यदि मान लो कोई योगी सन्यासी देखे तो उसको हाड़ मांस चाम का पुतला दिखाई पड़ेगा। और वेदांती को क्या दिखाई पड़ेगा, ये आप लोग बताओ। वेदांती को दिखाई देगा सब कुछ आत्मा यात्मा ब्रह्मी ब्रह्म है। भक्त को लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ेंगे, ये कहीं है बहन भाई, परंतु जिसकी जैसी भावना हो गई वैसा तत्काल फल उत्पन्न हो जाता है। बालक को वात्सल्य भाव, भक्त को साक्षात लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ेगा। योगी को जो है हाड़ मास चाम का पुतला है तो वेदांति के लिए ब्रह्ममय है, व्याघ्र के लिए भोजन है, सौत के लिए ईर्षा होगी, कामुक के लिए स्खलन होगा, विक्षेप होगा। कि पुरुष को मार्ग कैसे उपलब्ध कर ले, तो वास्तव में जो ब्रह्मा जी ने संसार बनाया है कि संसार में कुछ भी न अच्छाई है न बुराई है, ये तो हमारे भावना पर दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सत्संग में आए दिन हम यही सुनते हैं कि जो है अपने भावनाओं को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் ஷைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பாலக்பனா சூட் கே துமாரே சாத் ஆயா நீ, யௌவனப்பனா சூட் கே தமாரே சாத் ஆயா நீ, புடௌத்தி பனா ஆகி புடௌத்தி மே தும் பைட்டே ஹோ அபி, லேக்கின் யே பி சூட் ஜாயேகா. கப் தக் பைட்டோகே, பரோசா ஹே, குச் தோ பதாவோ, தஸ் வர்ஷ கஹ நீ சக்தே, பீஸ் வர்ஷ கஹ நீ சக்தே, பச்சாஸ் வர்ஷ கல்பனாஹி சோட் தோ மஹாராஜ், ये तो असंभव. दस तो फिर भी शायद संभव है, आशा कर लेंगे है? दस तो फिर भी आशा कह है, आशा कर सकते हैं कि शायद जी जाए दस, अभी भी विश्वास है. बीस वर्ष बहुत ही कम भरोसा है, जी भी सकते हैं बीस वर्ष. पचास वर्ष है, पचास वर्ष अब आज के बाद पचास वर्ष है, कैसा लग रहा है आपको? प्रेमपुरी में आप आओगे पचास वर्ष के बाद है? असंभव है. व्यावृत्त तुम, लेकिन तुम ये बुढ़ौती चला जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम रहोगे. और एक वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि तुम दूसरे जन्म में चले जाओगे, जन्मांतर में चले जाओगे. जन्मांतर में तुम्हें चले जाओगे तो फिर ये बुढ़ौती तो नहीं जाएगा, यही व्यावृत्ति है. तुम जहां जहां जाओ वहां वहां ये अवस्था यदि जाए तो तुम और तुम्हारी अवस्था की एकता सिद्ध होगी. लेकिन तुम जहां जाते हो तुम्हारी ये अवस्था वहां नहीं जाती, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तो तुम्हारी और तुम्हारी अवस्था के साथ दोस्ती खोटी है. हाँ, इस शरीर के इस बढ़ोती के साथ ये तुमने जो दोस्ती बना रखी है कि यही मेरा साथी है, यही मेरा मित्र है, यही मेरा बेड़ा पार करेगा, सुख दुख में यही साथ देगा, तो ये भरोसा नहीं कर लेना. ये ऐसा धोखेबाज है कि तुम चले जाओगे इसको छोड़कर ये यहीं रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, एक कदम नहीं जाएगा. हाँ, देहश्चितायाम, हाँ देहश्चितायाम, ज्यादा से ज्यादा शमशान में चिता तक पहुंच सकता है ये, उसके आगे तुम्हारे को साथ नहीं देने वाला ये. देहश्चितायाम परमार्थ लोके मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका. इसीलिए तुम्हारा असली मित्र तो शायद धर्म है. धर्म भी असली मित्र हम वेदांती लोग नहीं कहेंगे, वो भी बड़ा धोखाबाज है. यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा तो स्वर्ग तक साथ देगा वो धर्म, क्योंकि उस धर्म मूर्ख को वहां बढ़िया भोगने को मिलेगा ना, इसीलिए उसको पता है तुमको साथ देगा. हाँ, इसके पीछे लगेंगे तो स्वर्ग तक जाएगा, वहां अमृत पीने को मिलेगा, रंभा ऐश्वर्य आदि हैं, हैं उर्वशी आदि हैं, उनका आलिंगन मिलेगा. ये धर्म भी बड़ा बदमाश स्वार्थी है. और जब ये समाप्त तो हो जाएगा धर्म, तुम अकेले आना पड़ेगा. धर्म समाप्त तो हो गया तब फिर अकेले आओगे. यहां आते समय धर्म खाली खत्म हो गया, साथ नहीं देने वाला वो भी. तो ये सब व्यावृत्त है। अधर्म भी व्यावृत्त है, धर्म भी व्यावृत्त है, और धर्मजन्य लोक व्यावृत्त हैं, पापजन्य लोक व्यावृत्त हैं। तो बाल्यादिशु अपि जाग्रदादिशु, बाल्यादिशु व्यावृतासु, ये हट जाने पर भी, छूट जाने पर भी तुम छूटे नहीं हो, तुम वही के वही हो, वही मैं हूं। ये भाव अहम अस्मि, ये भाव यथावत आपके साथ है। अहम अस्मि, वही बालक का जो व्यक्ति मैं हूं, वही मैं हूं अब। जागृदादिषु, अभी जागृत में ये शरीर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम स्वप्न में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। स्वप्न में दूसरा ही सूक्ष्म शरीर होगा, और वासनामय शरीर तुम्हें प्राप्त होगी, ये अन्नमय शरीर, कर्मजन्य शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो यहीं छूट जाएगा। ये कहेगा तुमको हमारे साथ मित्रता करनी हो तो तुम फिर जगकर आ जाओ, नहीं तो तुम जाओ उधर से उधर, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तुम्हारे पीछे लगकर नहीं जाएगा। ये व्यावृतासु अनुवर्तमानम अहम, अवस्थासु व्यावृतासु अपि अहम अनुवर्तमान, अवस्थाएं छूटते जाते जाने पर भी मैं छूटता नहीं हूं, जागृत छूटने पर भी जागृत के साथ मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं, जागृत छूट जाता है, स्वप्न से मैं सुसुप्ति में जाता हूं, स्वप्न छूट जाता है, मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं और स्वप्न से मैं फिर जागृत में आता हूं तो स्वप्न छूट जाता है, मैं जागृत में आता हूं, जागृत से फिर स्वप्न में जाता हूं, स्वप्न से सुसुप्ति में जाता हूं, जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी नहीं है, सुसुप्ति और स्वप्न जागृत में नहीं है, ये परस्पर व्यावृत है, परस्पर व्यावृत है, एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरा साथ नहीं रह सकते। ये अवस्थाएं ऐसी हैं कि एक अवस्था के साथ दूसरी अवस्था नहीं रह सकती, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं हर अवस्था में रह सकता हूं। जागृत में भी मैं था, जागृत से भी मैं मिलकर रहा था, स्वप्न में मैं था, स्वप्न से भी मैं मिलकर रहा था, सुसुप्ति में गया तो सुसुप्ति में भी मेरा विरोध नहीं किया, मैंने सुसुप्ति का विरोध नहीं किया, सुसुप्ति में भी मैं मिलकर रहा था, वही मैं जो जागृत में था, वही मैं स्वप्न होता हुआ सुसुप्ति में गया, वही मैं जो सुसुप्ति में था वही स्वप्न होता हुआ जागृत में आ गया, मैं वही हूं। अंतस्फुरंतम, हर अवस्था और हर वय में शरीर के अंदर स्फुरंतम, अहम अहम के रूप में स्फुरण होता रहता है, वो मैं हूं। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि, हर अवस्थाओं में, पहले किसी के बेटे थे और बेटे होकर रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप किसी के बाप हो गए, और आप यही कहेंगे कि पहले मैं केवल बेटा था, वही मैं अब बाप भी हो गया। सर्वासु अवस्थासु, और जो अब बाप था, कुछ दिन पहले मैं बाप था, अब दादा भी हो गया, नाना भी हो गया, हो गए कि नहीं? पहले मैं जिसकी बेटी थी, केवल बेटी थी, उसके बाद में किसी की पत्नी हो गई, उसके बाद में किसी की मां हो गई, उसके बाद में किसी की नानी हो गई, दादी हो गई, लो जी शायद परदादी भी हो गई। कब तक होते रहोगे, क्या क्या होते रहोगे? तो जो कुछ होना है हो जाना, उससे तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है ना? काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है, कहते पता नहीं क्या है, तुम ऐसे काले रंग हो कि कोई रंग नहीं चढ़ने वाला है, जहां भी जाओगे काले रंग, ऐसे निठाले रंग हो कि ऐसे निराले रंग हो, हाँ जागृत का रंग भी नहीं चढ़ेगा, स्वप्न का रंग भी नहीं चढ़ेगा, सुसुप्ति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बचपन का रंग भी नहीं चढ़ेगा, जवानी का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बढ़ोती का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पत्नी का रंग भी नहीं चढ़ेगा। सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता, सब हटते जाएंगे, छूटते जाएंगे। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता स्वनु वर्तमान इह मत मंतास्फुरंतम सदा। सब व्यावृत्त होने पर भी एक चीज हमेशा अनुवृत्त रहता है, वह है अहम, मैं, स्फुरंतम सदा। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञात रहता हो, ज्ञात होता हुआ, अनुभव होता हुआ, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, ये अनुभव होता रहता है, वही मैं हूं। ये प्रतिविज्ञा है, ये प्रतिविज्ञा बाधित नहीं होती है, ये प्रतिविज्ञा नाश नहीं होती है। तुमको वही मैं हूं ये कराने वाला ही प्रतिविज्ञा है। व्यावृत्ता सुन वर्तमान महमित्यंत स्फुरंतम सदा, स्वात्मानं प्रकटी करोति भजताम। बोले महाराज, हर अवस्थाओं में बदलता हुआ भी मैं बदले बिना एक का एक, वही का वही, अहम अहम के रूप में रहता हूं, ये तो ठीक समझ में आ जाता है, लेकिन परमात्मा का तो किसी भी अनुभव में, किसी भी अवस्था में अनुभव नहीं हुआ है। जागृत में भी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैं हूं यह अनुभव तो होता है, परमात्मा है यह अनुभव नहीं हो रहा है। स्वप्न में भी मैं हूं यह अनुभव हो रहा है, परमात्मा है अनुभव नहीं हो रहा है। सुसुप्ति में भी मैं हूं यह अनुभव होता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, बचपन में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, जवानी में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, और बुढ़ौती में भी मैं हूं यह अनुभव अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं परमात्मा हूं यह अनुभव नहीं हो रहा है महाराज। कारण क्या है? तो यही मैं और परमात्मा के भेदक तत्व है। वो जो भेदक तत्व का भेद जब तक नहीं होगा, भेदन नहीं होगा, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा, इस शब्द मैंने प्रयोग कर दिया, ध्यान रख लेना, भेदक का भेदन है? भेदन माने नाश करना, भेदक माने अलग करने वाले का नाश करना, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा। कौन है इस भेदक का कारण, भेद करने वाला कारण कौन है? वेदांत ने उसी को अविद्या कह दिया है, वेदांत ने उसी को माया कह दिया है। पहले श्लोक में कहा था माया जवनिका, माया का पर्दा है, ये पर्दा ही भेदक है। कमरे में क्या करते हैं कि पार्टीशन करना होता है तो 2 इंच का छोटा सा एक प्लाईवुड लगा देते हैं, है ना? कितना स्पेस का है वो, कितना मोटा है वो प्लाईवुड, 2 इंच का। अब प्लाईवुड लगा दिया तो 2 कमरे हो गए, लेओ जी, एक ही कमरा को। किसने किया 2 कमरे? वो कमरा अंदर का, वो कमरा बाहर का। अंदर और बाहर का विभाजन करने वाला कौन, भेदक कौन हुआ? हाँ, वही प्लाईवुड पार्टीशन जो किया था वही उसका भेदक हुआ। और वो जब तक वहां खड़ा रहेगा तब तक अंदर और बाहर, छोटा और बड़ा, ये होते रहेंगे। और उस भेदक का जब भेदन कर दोगे, उखाड़ के फेंक दोगे, तो न अंदर का रहेगा, न बाहर का रहेगा, न छोटा रहेगा, न बड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? एक, अंदर और बाहर का एक ही हो जाएगा, छोटा और बड़ा एक ही हो जाएगा। उस भेदक का नाम ही है माया, उस भेदक का नाम ही है अविद्या, उसी के चलते सारा भेद सिद्ध हो रहा है। जागृत भिन्न, स्वप्न भिन्न, सुसुप्ति भिन्न, ये भेदक करने वाला तत्व क्या है? वही अविद्या, वही माया है। उस भेदक का जब नाश होता है तो आपको न जागृत स्वप्न में भेद होगा, न जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भेद होगा, न सुसुप्ति जागृत में भेद होगा, न समाधि में भेद होगा। अपने स्वरूप में जागृत स्वप्न सुसुप्ति है नहीं। जैसे समुद्र के गहराई में तरंगे नहीं हैं, ऊपर की सतह में ही छोटे और बड़े तरंगे हैं, गहराई में एक भी तरंग नहीं है, तरंगा आभास भी नहीं है, गहराई में पानी गंभीर ठोस बैठा हुआ है, अविचल बैठा है, अविक्रिय बैठा है, पानी के गहराई में पानी की तरंगों में स्पंद नहीं है, गति नहीं है, हलचल नहीं है। और ये सारे हलचल पानी के ऊपर के समुद्र के ऊपर की सतह में है, और ये सारे भेदक उस

उसी का नाम है भजन। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में भक्ति का स्वरूप व्याख्या किया है, अपने ही स्वरूप यथार्थ स्वरूप का जो अनुसंधान है उसी का नाम है भक्ति। परस्वरूप का अनुसंधान का नाम भक्ति नहीं है। दूसरे के स्वरूप का अनुसंधान करके दूसरा कैसा है, दूसरा क्या है, दूसरा कैसा है, दूसरा नित्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा आनंद स्वरूप है, दूसरा ज्ञान स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है, दूसरा व्यापक है, दूसरा नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, अविचल है, ये भक्ति वेदांत को स्वीकार नहीं है। होगा वैष्णवों को ये भक्ति स्वीकार्य, वेदांत को ये स्वीकार्य नहीं है। परमात्मा सच्चिद आनंद अद्वितीय है, परमात्मा नित्य शाश्वत है, सुख स्वरूप है, करुणा वरुणालय है, दयालु है, कृपालु है, वेदांत को ये भक्ति मंजूर नहीं है। परमात्मा जैसा है वैसा ही मैं हूं, ये भक्ति मंजूर है वेदांत को। स्वस्वरूप अनुसंधान, दूसरे के बारे में अनुसंधान करके तुमको क्या मिलने वाला है, तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो, अपने बारे में भी अनुसंधान करो। तुम अपने बारे में कह रहे हो कि मैं मूर्ख खल कामी, और दूसरे के बारे में कह रहे हो कृपा करो भरता है, अपने बारे में कह रहे हो मैं मूर्ख खल कामी, और तुम पहले ही अपने स्वरूप ही मूर्ख खल कामी स्वीकार कर लिया है, तो ये मूर्ख खल कामी तुम्हारा नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक स्वरूप है, बोलो। मैं मूर्ख खल कामी, ये तुम्हारा अपने बारे में जो निश्चय है वह नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक है। आनुषंगिक शब्द का अर्थ समझ रहे हो ना? आनुषंगिक का मतलब होता है बाहर से किसी निमित्त से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ को आनुषंगिक कहते हैं। जैसे कोयले में काला पना, यह आनुषंगिक है कि उसका स्वरूप है, स्वरूप है, समझ रहे ना? और कोयले में यदि ऊपर से चूना लपेट दो, सफेद चूना का पेंट कर दो, कोयले के अंदर अंदर कोयला है और बाहर एशियन पेंट का व्हाइट पेंट कर दो, तो कैसा दिखेगा वो कोयला? सफेद दिखेगा। तो ये कोयले की सफेदी आनुषंगिक है कि स्वरूप है? आनुषंगिक है। किसी क्रिया के माध्यम से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संयोग से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी देश के संबंध से आता है आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संबंध से आता है, किसी काल के संबंध से आता है, वो सब आनुषंगिक है, स्वरूप नहीं है। अब इसी बात पर विचार करो, मैं मूर्ख खल कामी तुम कहे जा रहे हो अपने बारे में, ये तुम्हारा स्वरूप है कि आनुषंगिक है? आनुषंगिक है। इसका मतलब मैं मूर्ख खल कामी, ये तुम्हारा स्वरूप तो है ही नहीं। तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा अपना क्या स्वरूप है, बोलो। परमात्मा के बारे में तो कह रहे हो कि कृपा करो भरता है। अरे भाई, परमात्मा के बारे में जो निश्चय तुमने किया है वही निश्चय तुमने अपने बारे में किया है कि नहीं? अपने बारे में जो निश्चय वही परम, क्योंकि परमात्मा का भी जो स्वरूप है कृपा करो भरता, कृपा करना, करुणा वरुणालयपना, अहेतुक कृपा सिंधो, ये सब आनुषंगिक है। परमात्मा के भी ये सब आनुषंगिक है, जो बात तुम प्रार्थना में स्तुति में कहे जा रहे हो। नित्य सुख शांति सच्चिद आनंद अद्वितीय, वो उसका स्वरूप है, वही स्वरूप तुम्हारा है। इसके अलावा उसका भी आनुषंगिक है, तुम्हारा भी आनुषंगिक है, तुम्हारा उसका भी वो आनुषंगिक व्यावृत्त होता है, तुम्हारा भी आनुषंगिक व्यावृत्त होता है। अनुवर्तन क्या है कि जो तुम्हारा स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। यही भक्ति वेदांत का सर्वोत्तम भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम व्यक्तिरित्य विधीयते। इस तरह आत्मानम भजताम, स्वात्मानम भजताम, उस परमात्मा के भजन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं, प्रकटीकरोति, अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं।

हैं का मतलब हुआ कि परमात्मा आपकी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अपनी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देने का तात्पर्य यह हुआ कि तुम्हारी अपनी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देना। ये देख, मैं ऐसा हूं, तू भी ऐसे ही है, मैं जैसा हूं तू भी वैसा ही है, यही परमात्मा के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का प्राकट्य करना है। किसके द्वारा? तो बोले यो मुद्रया भद्रयाय, ये परमात्मा ये कह रहे हैं, मैं जैसा हूं ऐसे तू है, मेरे में और तेरे में रंच भी भेद नहीं है, और यदि अभी भेद की प्रतीति हो रही है तो वो भेद की प्रतीति आनुषंगिक है। तू ये त्रिगुणात्मी का जो गुण के प्रकृति के विषम अवस्था है, इनके साथ जुड़ा हुआ होने के कारण तेरे में इस समय जो भी भाव है, जन्मने वाला, बालकपना, यौवनपना, वार्धक्यपना, स्त्रीपना, पुरुषपना, रोगीपना, भोगीपना, ये सब के सब इसी के चलते हैं। ये त्रिगुणात्मी का जगत का विषम अवस्था, ये तीनों उंगली बराबर नहीं है, इसका मतलब यह कि जगत सृष्टि की अवस्था है। तीनों उंगली बराबर होता है तो प्रलय होता है। तीन गुण की साम्य अवस्था को प्रलय बोलते हैं, तीन गुणों की जो विषम अवस्था है उसको सृष्टि बोलते हैं। जब गुण में विषमता आती है तब जगत उत्पन्न होता है, जब गुणों में साम्यता आती है तब प्रलय हो जाता है। इस समय हमारी उंगलियां तीन है, क्यों हैं? क्योंकि इस समय सृष्टि है, गुण की विषमता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में परस्पर विषमता है, एक रूपता नहीं है, इसलिए जगत दिख रहा है। और यही तीन गुण विषम गुण वाले जगत के साथ, त्रिगुणात्मिका जगत के साथ तुम जुड़े हुए हो अपने आप को, इसीलिए इसके गुण तुम में आ गया, इसलिए आनुषंगिक हो गया है। तुम कह रहे हो कि मेरा जन्म हुआ है, मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, ये तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। देखो ये ब्रह्म है, असंग ब्रह्म है, इसका इन तीन गुणों से कोई संबंध नहीं है, असंग है, खड़ा करोगे तो भी उसके गुणों से जुड़ेगा नहीं, ऐसे तो असंग ही है। यही तो असंगो यम पुरुषाः, देखो इनसे कोई संबंध नहीं। तो ये आत्मानं प्रगटी, ये ब्रह्म परमात्मा, उस भजताम भगवान के भजन करने वाले, तत्व चिंतन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं? तू इससे हटकर मेरे से जुड़ जा, बस जीवात्मा, ये ब्रह्म, ये जीव, ये जगत। ये जीव जब तक जगत के साथ जुड़ा रहेगा तब तक जगत के धर्म आनुषंगिक इसको प्राप्त होते रहेंगे। जगत में क्या है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मा है। जगत में चार चीजें, एक तो अनित्यता है, दूसरा असुचिता है, तीसरा दुख रूपता है, चौथा अनात्मता है, और पांचवा अनेक भेदता है, विषमता है। और इसी के साथ जुड़ता रहेगा तो वो सारी चीज तुझे तेरे में प्राप्त होता रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। छोड़ दे, तू असंग हो जाए, इसके जुड़ जाए। इसमें सत है, चित है, आनंद है, अद्वितीय है, और चैतन्यपना है, ज्ञान रूपता। इसके साथ जुड़ते ही, जैसे अग्नि के साथ जुड़ते ही अग्नि का सारा धर्म लोहे को प्राप्त हो जाता है, इसी तरह ब्रह्म के साथ जुड़ते ही ब्रह्म के सारे भाव, नित्य भाव, जीवात्मा को भी नित्य प्राप्त हो जाता है। ये फिर आनुषंगिक नहीं होगा, ये स्वरूप होगा। इसके साथ जुड़ने पर आनुषंगिक है, इसके साथ जुड़ने पर स्वरूप प्राप्ति है, आनुषंगिक नहीं होगा। इस तरह भगवान शिव दक्षिणामूर्ति ज्ञानमूर्ति ये भद्रा मुद्रा के द्वारा उसके ही अंदर विद्यमान परमात्मा अपने आप को प्रकट करके, पहले जीवो हम कहता था, परमात्मा की कृपा से शिवो हम कहने लग जाएगा, पहले को हम कहता था, परमात्मा की कृपा से सो हम कहने लगेगा, इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि भाव जीव ब्रह्म की एकता तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ये आत्मानम स्वात्मानम प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम। श्री दक्षिणामूर्तये सनत सुजात आदि सनत कुमारों को भगवान दक्षिणामूर्ति शिव ने सबसे पहले महावाक्यों का उपदेश देते समय में खुद अपने आप मौन होकर केवल इशारे से तत्व का उपदेश करके, महावाक्यों का उपदेश करके सनत कुमारों को कृतार्थ किया है, और उनके सारे शंकाओं का निवारण करके
उनको कृतार्थ करके गुरुमूर्ति उस अवस्था को कहते हैं दक्षिणामूर्ति अवस्था। ऐसे ज्ञानदाता गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, इसको भद्रा मुद्रा भी कहते हैं और इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तीन मुद्रा, तीन नाम है इस मुद्रा का, चिन्ह मुद्रा, भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, उसी का संकेत किया। और क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Nesa Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. दोस्तों, अभी हम जिस संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, उनका नाम नेसर है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक शिव भक्त कालहस्ती के कन्नप्पर की गाथा हम सुन चुके हैं। इसी प्रदेश के कामिली नगरी में एक बुनकरों का परिवार रहता था। उस परिवार में नेसर नामक शिव भक्त का जन्म हुआ। पेरियपुराणम में चेक्किलर ने आधुनिक तमिल प्रदेश की सीमा से दूर स्थित कामिली के बुनकर नेसर का उल्लेख इसलिए किया है कि संभवतः उस युग में यह क्षेत्र भी तमिल प्रदेश का अंग था। नेसर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को पूर्णतः शिव के पंचाक्षर को समर्पित कर दिया था। मन, वचन और कर्म से वे भक्तों की सेवा में लीन रहते थे। शारीरिक श्रम से बुने हुए वस्त्र संतों को अर्पित करने में उन्हें अनन्य हर्ष होता था। चेरभूमि में 11वीं शताब्दी में तमिल भाषा का प्रचलन था। परंपरा से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को 5 द्रविड़ देश कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी तमिल राजाओं के शिलालेख मिलते हैं। इस विषय पर शोध होना आवश्यक है क्योंकि इससे प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ेगा। नेसर का महत्व उनके संपूर्ण त्याग की भावना में निहित है। मनसा वाचा कर्मणा भक्तिभाव से ऋषभवाहन शिव का स्मरण, चिंतन और वस्त्र धोती कोवनम आदि के दान द्वारा निरंतर शिव के नमः शिवाय पंचाक्षर के जप के कारण नेसर को पुराण में स्थान मिला है। इसीलिए उन्हें एक उच्च कोटि का नायनमार या संत माना गया है और पेरिय पुराण में उनका एक विशेष स्थान है।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: சைவம்.org-இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். இதில் பாடியிருப்பவர் டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் அவர்கள். ஓம் நமச்சிவாய.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

यच्छतम् ओम ओम प्रातःयुजा विबोधया अश्विनौ आ इह गच्छताम् अस्या सोमस्या पीतये या सुरथा रथितमा उभा देवा दिवि स्पृशा।

नमः ॐ कौशिक दीक्षागुर्वगस्त्यादि दीक्षागुरुभूतोर्ध्ववदनाय नमः ॐ कौशिकाय नमः ॐ कौशिक दीक्षा गुरुभूत पश्चिम वदनाय नमः ॐ कौशिक

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பாலக்பனா சூட் கயா தமாரே சாத் ஆயா நஹி, யௌவனபனா சூட் கயா தமாரே சாத் ஆயா நஹி, புடௌத்திபனா ஆ கயி புடௌத்தி மே தும் பைட்டே ஹோ அபி, லேகின் யே பி சூட் ஜாயேகா. கப் தக் பைட்டோகே, பரோசா ஹை, குச் தோ பதாவோ, 10 வர்ஷ கஹ நஹி சக்தே, 20 வர்ஷ கஹ நஹி சக்தே, 50 வர்ஷ கல்பனா ஹீ சோட் தோ மஹாராஜ், ये तो असंभव. 10 तो फिर भी शायद संभव है, आशा कर लेंगे. 10 तो फिर भी आशा कह है, आशा कर सकते हैं कि शायद जी जाएं 10, अभी भी विश्वास है. 20 वर्ष बहुत ही कम भरोसा है, जी भी सकते हैं 20 वर्ष. 50 वर्ष है, 50 वर्ष अब आज के बाद 50 वर्ष है, कैसा लग रहा है आपको? प्रेमपुरी में आप आओगे 50 वर्ष के बाद? है असंभव है. व्यावृत्त तुम, लेकिन तुम, ये बुढ़ौती चला जाएगा लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम रहोगे. और एक वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि तुम दूसरे जन्म में चले जाओगे, जन्मांतर में चले जाओगे. जन्मांतर में तुम्हें चले जाओगे तो फिर ये बुढ़ौती तो नहीं जाएगा, यही व्यावृत्ति है. तुम जहां जहां जाओ वहां वहां ये अवस्था यदि जाए तो तुम और तुम्हारी अवस्था की एकता सिद्ध होगी. लेकिन तुम जहां जाते हो तुम्हारी ये अवस्था वहां नहीं जाती, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तो तुम्हारी और तुम्हारी अवस्था के साथ दोस्ती खोटी है. हाँ, इस शरीर के इस बढ़ोती के साथ ये तुमने जो दोस्ती बना रखी है कि यही मेरा साथी है, यही मेरा मित्र है, यही मेरा बेड़ा पार करेगा, सुख दुख में यही साथ देगा, तो ये भरोसा नहीं कर लेना. ये ऐसा धोखेबाज है कि तुम चले जाओगे इसको छोड़कर ये यही रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, एक कदम नहीं जाएगा. देहश्चितायाम, हाँ, देहश्चितायाम, ज्यादा से ज्यादा शमशान में चिता तक पहुंच सकता है ये, उसके आगे तुम्हारे को साथ नहीं देने वाला ये. देहश्चितायाम परमार्थ लोके मार्गे धर्मानुगोकच्छति जीवयेका. इसीलिए तुम्हारा असली मित्र तो शायद धर्म है. धर्म भी असली मित्र हम वेदांती लोग नहीं कहेंगे, वो भी बड़ा धोखाबाज है. यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा तो स्वर्ग तक साथ देगा वो धर्म, क्योंकि उस धर्म मूर्ख को वहां बढ़िया भोगने को मिलेगा ना, इसलिए उसको पता है तुमको साथ देगा. हाँ, इसके पीछे लगेंगे तो स्वर्ग तक जाएगा, वहां अमृत पीने को मिलेगा. रंभा ऐश्वर्य आदि हैं, उर्वशी आदि हैं, उनका आलिंगन मिलेगा. ये धर्म भी बड़ा बदमाश स्वार्थी है. और जब ये समाप्त हो जाएगा धर्म, तुम अकेले आना पड़ेगा. धर्म समाप्त हो गया तब फिर अकेले आओगे. यहां आते समय धर्म खाली खत्म हो गया, साथ नहीं देने वाला वो भी. तो ये सब व्यावृत्त हैं। अधर्म भी व्यावृत्त है, धर्म भी व्यावृत्त है, और धर्मजन्य लोक व्यावृत्त हैं, पापजन्य लोक व्यावृत्त हैं। तो बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिसु, बाल्यादिसु व्यावृतासु, ये हट जाने पर भी छूट जाने पर भी तुम छूटे नहीं हो, तुम वही के वही हो, वही मैं हूं। ये भाव अहम अस्मि, ये भाव यथावत आपके साथ है। अहम अस्मि वही बालक का जो व्यक्ति मैं हूं, वही मैं हूं अब। जागृदादिषु, अभी जागृत में ये शरीर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम सपने में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सपने में दूसरा ही सूक्ष्म शरीर होगा और वासनामय शरीर तुम्हें प्राप्त होगी, ये अन्नमय शरीर कर्मजन्य शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो यहीं छूट जाएगा। ये कहेगा तुमको हमारे साथ मित्रता करनी हो तो तुम फिर जगकर आ जाओ, नहीं तो तुम जाओ उधर से उधर, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तुम्हारे पीछे लगकर नहीं जाएगा। ये व्यावृतासु अनुवर्तमानम अहम, अवस्थासु व्यावृतासु अपि अहम अनुवर्तमान, अवस्थाएं छूटते जाते जाने पर भी मैं छूटता नहीं हूं, जागृत छूटने पर भी जागृत के साथ मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं, जागृत छूट जाता है, स्वप्न से मैं सुषुप्ति में जाता हूं, स्वप्न छूट जाता है, मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं और स्वप्न से मैं फिर जागृत में आता हूं तो स्वप्न छूट जाता है, मैं जागृत में आता हूं, जागृत से फिर स्वप्न में जाता हूं, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता हूं, जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं है, सुषुप्ति और स्वप्न जागृत में नहीं है, ये परस्पर व्यावृत्त है, परस्पर व्यावृत्त है, एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरा साथ नहीं रह सकते। ये अवस्थाएं ऐसी हैं कि एक अवस्था के साथ दूसरी अवस्था नहीं रह सकती, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं हर अवस्था में रह सकता हूं। जागृत में भी मैं था, जागृत से भी मैं मिलकर रहा था, स्वप्न में मैं था, स्वप्न से भी मैं मिलकर रहा था, सुषुप्ति में गया तो सुषुप्ति में भी मेरा विरोध नहीं किया, मैंने सुषुप्ति का विरोध नहीं किया, सुषुप्ति में भी मैं मिलकर रहा था, वही मैं जो जागृत में था, वही मैं स्वप्न होता हुआ सुषुप्ति में गया, वही मैं जो सुषुप्ति में था वही स्वप्न होता हुआ जागृत में आ गया, मैं वही हूं। अंतस्फुरंतम, हर अवस्था और हर वय में शरीर के अंदर स्फुरंतम, अहम अहम के रूप में स्फुरण होता रहता है, वो मैं हूं। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि, हर अवस्थाओं में, पहले किसी के बेटे थे और बेटे होकर रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप किसी के बाप हो गए और आप यही कहेंगे कि पहले मैं केवल बेटा था, वही मैं अब बाप भी हो गया। सर्वासु अवस्थासु, और जो अब बाप था, कुछ दिन पहले मैं बाप था, अब दादा भी हो गए, नाना भी हो गए, हो गए कि नहीं? पहले मैं जिसकी बेटी थी, केवल बेटी थी, उसके बाद मैं किसी की पत्नी हो गई, उसके बाद में किसी की मां हो गई, उसके बाद में किसी की नानी हो गई, दादी हो गई, लो जी शायद परदादी भी हो गई। कब तक होते रहोगे, क्या क्या होते रहोगे? तो जो कुछ होना है हो जाना, उससे तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है? कहते हैं काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है ना? काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है, कहते पता नहीं क्या है, तुम ऐसे काले रंग हो कि कोई रंग नहीं चढ़ने वाला, जहां भी जाओगे काले रंग, ऐसे निठाले रंग हो कि ऐसे निराले रंग हो, हाँ जागृत का रंग भी नहीं चढ़ेगा, स्वप्न का रंग भी नहीं चढ़ेगा, सुसुप्ति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बचपन का रंग भी नहीं चढ़ेगा, जवानी का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बढ़ोती का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पत्नी का रंग भी नहीं चढ़ेगा। सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता, सब हटते जाएंगे, छूटते जाएंगे। बाल्यादि स्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमिह मत मन्तः स्फुरन्तम् सदा। सब व्यावृत्त होने पर भी एक चीज हमेशा अनुवृत्त रहता है, वह है अहम, मैं, स्फुरन्तम् सदा। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञात रहता हो, ज्ञात होता हुआ, अनुभव होता हुआ, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, ये अनुभव होता रहता है, वही मैं हूं। ये प्रतिविज्ञा है, ये प्रतिविज्ञा बाधित नहीं होती है, ये प्रतिविज्ञा नाश नहीं होती है। तुमको वही मैं हूं ये कराने वाला ही प्रतिविज्ञा है। व्यावृत्ता सुन वर्तमान महामित्यंत स्फुरंतम सदा, स्वात्मानम प्रकटी करो अति भजताम। बोले महाराज, हर अवस्थाओं में बदलता हुआ भी मैं बदले बिना एक का एक, वही का वही, अहम अहम के रूप में रहता हूं, ये तो ठीक समझ में आ जाता है, लेकिन परमात्मा का तो किसी भी अनुभव में, किसी भी अवस्था में अनुभव नहीं हुआ है। जागृत में भी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैं हूं यह अनुभव तो होता है, परमात्मा है यह अनुभव नहीं हो रहा है। स्वप्न में भी मैं हूं यह अनुभव हो रहा है, परमात्मा है अनुभव नहीं हो रहा है। सुसुप्ति में भी मैं हूं यह अनुभव होता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, बचपन में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, जवानी में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, और बुढ़ौती में भी मैं हूं यह अनुभव अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं परमात्मा हूं यह अनुभव नहीं हो रहा है महाराज। कारण क्या है? तो यही मैं और परमात्मा के भेदक तत्व है। वो जो भेदक तत्व का भेद जब तक नहीं होगा, भेदन नहीं होगा, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा, इस शब्द मैंने प्रयोग कर दिया, ध्यान रख लेना, भेदक का भेदन है, भेदन माने नाश करना, भेदक माने अलग करने वाले का नाश करना, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा। कौन है इस भेदक का कारण, भेद करने वाला कारण कौन है? वेदांत ने उसी को अविद्या कह दिया है, वेदांत ने उसी को माया कह दिया है। पहले श्लोक में कहा था माया जवनिका, माया का पर्दा है, ये पर्दा ही भेदक है। कमरे में क्या करते हैं कि पार्टीशन करना होता है तो दो इंच का छोटा सा एक प्लाईवुड लगा देते हैं, है ना? कितना स्पेस का है वो, कितना मोटा है वो प्लाईवुड, दो इंच का। अब प्लाईवुड लगा दिया तो दो कमरे हो गए, ले जी एक ही कमरा को। किसने किया दो कमरे? वो कमरा अंदर का, वो कमरा बाहर का, अंदर और बाहर का विभाजन करने वाला कौन, भेदक कौन हुआ? हाँ, वही प्लाईवुड पार्टीशन जो किया था वही उसका भेदक हुआ। और वो जब तक वहां खड़ा रहेगा तब तक अंदर और बाहर, छोटा और बड़ा, ये होते रहेंगे। और उस भेदक का जब भेदन कर दोगे, उखाड़ के फेंक दोगे, तो न अंदर का रहेगा, न बाहर का रहेगा, न छोटा रहेगा, न बड़ा रहेगा, फिर क्या होगा? एक, अंदर और बाहर का एक ही हो जाएगा, छोटा और बड़ा एक ही हो जाएगा। उस भेदक का नाम ही है माया, उस भेदक का नाम ही है अविद्या, उसी के चलते सारा भेद सिद्ध हो रहा है। जागृत भिन्न, स्वप्न भिन्न, सुसुप्ति भिन्न, ये भेदक करने वाला तत्व क्या है? वही अविद्या, वही माया है। उस भेदक का जब नाश होता है तो आपको न जागृत स्वप्न में भेद होगा, न जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भेद होगा, न सुसुप्ति जागृत में भेद होगा, न समाधि में भेद होगा। अपने स्वरूप में जागृत स्वप्न सुसुप्ति है नहीं। जैसे समुद्र के गहराई में तरंगे नहीं हैं, ऊपर की सतह में ही छोटे और बड़े तरंगे हैं, गहराई में एक भी तरंग नहीं है, तरंगा आभास भी नहीं है, गहराई में पानी गंभीर ठोस बैठा हुआ है, अविचल बैठा है, अविक्रिय बैठा है, पानी के गहराई में, पानी की तरंगों में स्पंद नहीं है, गति नहीं है, हलचल नहीं है। और ये सारे हलचल पानी के ऊपर के समुद्र के ऊपर की सतह में है, और ये सारे भेदक उस माया के सतह में है। माया से गहराई में, अविद्या से गहराई में जब जाते हैं वहां ये भेद नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप में ये सारी अवस्थाएं नहीं है। क्योंकि अपने ही स्वरूप में ये अवस्था होते तो मैं जहां जाता ये अवस्था वहीं जाते, हाँ, क्योंकि ये व्यावृत्त हो जाते हैं। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिसु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान महमित्यंत स्फुरंतम सदा स्वात्मानं प्रकटी करोति भजताम भजताम। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को उसी के सामने प्रकट करता है जो उसका भजन करता है। लेव जी, अब भजन कैसे करें महाराज, है? भजन कैसे करें? मजीरा, ढोल, चिमटा, है, ये सबके द्वारा भजन करें? हाँ, यहां भजन शब्द का अर्थ होता है भाग करना, विभाजन करना। भागो भक्ति, भंजनम भक्ति, ये जो विभाजन करना है, अलग अलग करना है, उसी का नाम है भजन। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में भक्ति का स्वरूप व्याख्या किया है, अपने ही स्वरूप यथार्थ स्वरूप का जो अनुसंधान है उसी का नाम है भक्ति। परस्वरूप का अनुसंधान का नाम भक्ति नहीं है। दूसरे के स्वरूप का अनुसंधान करके दूसरा कैसा है, दूसरा क्या है, दूसरा कैसा है, दूसरा नित्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा आनंद स्वरूप है, दूसरा ज्ञान स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है, दूसरा व्यापक है, दूसरा नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, अविचल है, ये भक्ति वेदांत को स्वीकार नहीं है। होगा वैष्णवों को ये भक्ति स्वीकार्य, वेदांत को ये स्वीकार्य नहीं है। परमात्मा सच्चिद आनंद अद्वितीय है, परमात्मा नित्य शाश्वत है, सुख स्वरूप है, करुणा वरुणालय है, दयालु है, कृपालु है, वेदांत को ये भक्ति मंजूर नहीं है। परमात्मा जैसा है वैसा ही मैं हूं, ये भक्ति मंजूर है वेदांत को। स्वस्वरूप अनुसंधान, दूसरे के बारे में अनुसंधान करके तुमको क्या मिलने वाला है, तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो, अपने बारे में भी अनुसंधान करो। तुम अपने बारे में कह रहे हो कि मैं मूर्ख खल कामी, और दूसरे के बारे में कह रहे हो कृपा करो भरता, है? अपने बारे में कह रहे हो मैं मूर्ख खल कामी, और तुम पहले ही अपने स्वरूप ही मूर्ख खल कामी स्वीकार कर लिया है, तो ये मूर्ख खल कामी तुम्हारा नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक स्वरूप है, बोलो। मैं मूर्ख खल कामी, ये तुम्हारा अपने बारे में जो निश्चय है वो नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक है? आनुषंगिक शब्द का अर्थ समझ रहे हो ना?

क्रिया के माध्यम से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संयोग से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी देश के संबंध से आता है आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संबंध से आता है, किसी काल के संबंध से आता है, वो सब आनुषंगिक है, स्वरूप नहीं है। अब इसी बात पर विचार करो, मैं मूर्ख खलकामी तुम कहे जा रहे हो अपने बारे में, ये तुम्हारा स्वरूप है कि आनुषंगिक है? आनुषंगिक है, इसका मतलब मैं मूर्ख खलकामी है तुम्हारा स्वरूप तो है ही नहीं। तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा अपना क्या स्वरूप है, बोलो। परमात्मा के बारे में तो कह रहे हो कि कृपा करो भरता है। अरे भाई, परमात्मा के बारे में जो निश्चय तुमने किया है वही निश्चय तुमने अपने बारे में किया है कि नहीं? अपने बारे में जो निश्चय वही परम, क्योंकि परमात्मा का भी जो स्वरूप है कृपा करो भरता, कृपा करना, करुणा वरुणालयपना, अहेतुक कृपा सिंधो, ये सब आनुषंगिक है। परमात्मा के भी ये सब आनुषंगिक है, जो बात तुम प्रार्थना में स्तुति में कहे जा रहे हो। नित्य सुख शांति सच्चिद आनंद अद्वितीय, वो उसका स्वरूप है, वही स्वरूप तुम्हारा है। इसके अलावा उसका भी आनुषंगिक है, तुम्हारा भी आनुषंगिक है, तुम्हारा उसका भी वो आनुषंगिक व्यावृत्त होता है, तुम्हारा भी आनुषंगिक व्यावृत्त होता है। अनुवर्तन क्या है कि जो तुम्हारा स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। यही भक्ति वेदांत का सर्वोत्तम भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम व्यक्तिरित्य विधीयते। इस तरह आत्मानम भजताम, स्वात्मानम भजताम, उस परमात्मा के भजन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं, प्रकटीकरोति, अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं का मतलब हुआ कि परमात्मा आपकी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देने का तात्पर्य यह हुआ कि तुम्हारी अपनी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देना। ये देख, मैं ऐसा हूं, तू भी ऐसे ही है, मैं जैसा हूं तू भी वैसा ही है, यही परमात्मा के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का प्राकट्य करना है। किसके द्वारा? तो बोले यो मुद्रया भद्रया, ये परमात्मा ये कह रहे हैं, मैं जैसा हूं वैसे तू है, मेरे में और तेरे में रंच भी भेद नहीं है, और यदि अभी भेद की प्रतीति हो रही है तो वो भेद की प्रतीति आनुषंगिक है। तो ये त्रिगुणात्मी का जो गुण के प्रकृति के विषम अवस्था है, इनके साथ जुड़ा हुआ होने के कारण तेरे में इस समय जो भी भाव है, जन्मने वाला, बालकपना, यौवनपना, वार्धक्यपना, स्त्रीपना, पुरुषपना, रोगीपना, भोगीपना, ये सब के सब इसी के चलते हैं। ये त्रिगुणात्मक का जगत का विषम अवस्था, ये तीनों उंगली बराबर नहीं है, इसका मतलब यह कि जगत सृष्टि की अवस्था है। तीनों उंगली बराबर होता है तो प्रलय होता है। तीन गुण की साम्य अवस्था को प्रलय बोलते हैं, तीन गुणों की जो विषम अवस्था है उसको सृष्टि बोलते हैं। जब गुण में विषमता आती है तब जगत उत्पन्न होता है, जब गुणों में साम्यता आती है तब प्रलय हो जाता है। इस समय हमारी उंगलियां तीन है, क्यों है? क्योंकि इस समय सृष्टि है, गुण की विषमता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में परस्पर विषमता है, एक रूपता नहीं है, इसलिए जगत दिख रहा है। और यही तीन गुण विषम गुण वाले जगत के साथ, त्रिगुणात्मिका जगत के साथ तुम जुड़े हुए हो अपने आप को, इसीलिए इसके गुण तुम में आ गया, इसलिए आनुषंगिक हो गया है। तुम कह रहे हो कि मेरा जन्म हुआ है, मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, ये तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। देखो ये ब्रह्म है, असंग ब्रह्म है, इसका इन तीन गुणों से कोई संबंध नहीं है, असंग है। खड़ा करोगे तो भी उसके गुणों से जुड़ेगा नहीं, ऐसे तो असंग ही है। यही तो असंगो यम पुरुषः, देखो इनसे कोई संबंध नहीं। तो ये आत्मानं प्रगटी, ये ब्रह्म परमात्मा, उस भजताम भगवान के भजन करने वाले, तत्व चिंतन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं, तू इससे हटकर मेरे से जुड़ जा, बस। जीवात्मा ये ब्रह्म, ये जीव, ये जगत, ये जीव जब तक जगत के साथ जुड़ा रहेगा
तब तक जगत के

कर्म आनुषंगिक इसको प्राप्त होते रहेंगे। जगत में क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा है। जगत में चार चीजें, एक तो अनित्यता है, दूसरा अशुचिता है, तीसरा दुख रूपता है, चौथा अनात्मता है और पांचवा अनेक भेदता है, विषमता है। और इसी के साथ जुड़ता रहेगा तो वो सारी चीज तुझे तेरे में प्राप्त होता रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अब छोड़ दे, तू असंग हो जाए, इसके जुड़ जाए। इसमें सत है, चित है, आनंद है, अद्वितीय है और चैतन्यपना है, ज्ञान रूपता। इसके साथ जुड़ते ही, जैसे अग्नि के साथ जुड़ते ही अग्नि का सारा धर्म लोहे को प्राप्त हो जाता है, इसी तरह ब्रह्म के साथ जुड़ते ही ब्रह्म के सारे भाव, नित्य भाव जीवात्मा को भी नित्य प्राप्त हो जाता है। ये फिर आनुषंगिक नहीं होगा, ये स्वरूप होगा। इसके साथ जुड़ने पर आनुषंगिक है, इसके साथ जुड़ने पर स्वरूप प्राप्ति है, आनुषंगिक नहीं होगा। इस तरह भगवान शिव दक्षिणामूर्ति ज्ञान मूर्ति ये भद्रा मुद्रा के द्वारा उसके ही अंदर विद्यमान परमात्मा अपने आप को प्रकट करके, पहले जीवो हम कहता था, परमात्मा की कृपा से शिवो हम कहने लग जाएगा, पहले को हम कहता था, परमात्मा की कृपा से सो हम कहने लगेगा, इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि भाव जीव ब्रह्म की एकता तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा ये आत्मानम स्वात्मानम प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम श्री दक्षिणामूर्तये। सनत सुजात आदि सनत कुमारों को भगवान दक्षिणामूर्ति शिव ने सबसे पहले महावाक्यों का उपदेश देते समय में खुद अपने आप मौन होकर केवल इशारे से तत्व का उपदेश करके, महावाक्यों का उपदेश करके सनत कुमारों को कृतार्थ किया है और उनके सारे शंकाओं का निवारण करके, उनको कृतार्थ करके गुरुमूर्ति उस अवस्था को कहते हैं दक्षिणामूर्ति अवस्था। ऐसे ज्ञानदाता गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, इसको भद्रा मुद्रा भी कहते हैं और इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तीन मुद्रा, तीन नाम है इस मुद्रा का, चिन्ह मुद्रा, भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, उसी का संकेत किया। और क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் நேச நாயனார் புராணம், presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. दोस्तों, अभी हम जिस संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे उनका नाम नेसर है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक शिव भक्त कालहस्ती के कन्नप्पर की गाथा हम सुन चुके हैं। इसी प्रदेश के कामिली नगरी में एक बुनकरों का परिवार रहता था। उस परिवार में नेसर नामक शिव भक्त का जन्म हुआ। पेरियपुराणम में चेक्युलर ने आधुनिक तमिल प्रदेश की सीमा से दूर स्थित कामिली के बुनकर नेसर का उल्लेख इसलिए किया है कि संभवत उस युग में यह क्षेत्र भी तमिल प्रदेश का अंग था। नेसर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को पूर्णतः शिव के पंचाक्षर को समर्पित कर दिया था। मन, वचन और कर्म से वे भक्तों की सेवा में लीन रहते थे। शारीरिक श्रम से बुने हुए वस्त्र संतों को अर्पित करने में उन्हें अनन्य हर्ष होता था। चेरभूमि में 11वीं शताब्दी में तमिल भाषा का प्रचलन था। परंपरा से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को 5 द्रविड़ देश कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी तमिल राजाओं के शिलालेख मिलते हैं। इस विषय पर शोध होना आवश्यक है क्योंकि इससे प्राचीन सांस्कृतिक